नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से

0: जबकि दो केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में, इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा। रजू करिए भक्ति संगीत नो कार्यक्रम अर्चना।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य स्वीयाम् ऐतिहासिकीं द्विदिवसीय यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैण्ड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रासमये प्रधानमन्त्री मोदी न्यूजीलैण्डदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा, पर्यटन, क्रीडा, पदप्रबन्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पञ्चज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैण्ड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैण्ड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमन्त्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारम्परिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढम्, आत्मनिर्भरं, भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम् नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामन्त्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनम् भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानकाधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्वचषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र

0: और दो केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: दरमियान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकरे वियतनामना फूक वक टापू नजीक बोट दुर्घटनामां 15 ભારતીય નાગરિકોના મોત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું। સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં ડોક્ટર જયશંકરે જણાવ્યું હતું કે તેઓ આ દુઃખદ બોટ દુર્ઘટનાથી ખૂબ જ દુઃખી છે। વિદેશમંત્રીએ મૃતકોના પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી અને ઇજાગ્રસ્તોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી હતી। ખાદ્ય સુરક્ષા

पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस

0: भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
3: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श

0: अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता युरियाले माओ तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने आईएनएस महेंद्रगिरि के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ एआई से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है,

0: चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब एक हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days. England beats Norway 2-1 to reach FIFA World Cup semi-finals. And Linda Noskova beats Karolina Muchova to win first Wimbledon tennis title. Prime Minister Narendra Modi has concluded his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand and departed for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. India and New Zealand elevated their bilateral ties to a strategic partnership and signed several agreements and memoranda of understanding across key sectors. These include defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry sectors. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations.
3: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है, ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है,

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: मित्रों, आज आशानो आंतरराष्ट्रीय दिवस पण छे। आशा एटले जीवनमां आवती अढळक मुश्केलीओमांथी पसार थई जवा माटे अदृश्य रूपे प्रगट थतुं आशानुं किरण। जीवनमां गमे तेटली मुश्केलीओ आवे परंतु क्यारे हिम्मत हारवी ना जोईए। आशा, आत्मविश्वास अने सकारात्मक विचार आपणने सफळता तरफ आगळ वधवामां मदद करे छे। आशावादी व्यक्ति दरेक पड़कारनो सामनो हिम्मतथी करी शके छे। जीवनमां निराशाने क्यारेय आववा न देवी, दरेक मुश्केलीमांथी बचवा के पार उतरवा कोईने कोई रस्तो होय ज छे, ते ज आशा छे। दुःख पछी सुख आवे ज छे, समय थંભી નથી જતો, તે આગળ વધતો જ રહે છે અને તે સકારાત્મક વિચારથી, આશાથી, હિંમતથી સફળતા અપાવતો જ રહે છે। સાંભળીએ ગીત ફકીરા ફિલ્મનું, મહેન્દ્ર કપૂરના સ્વરમાં।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: कार्यक्रम में सांभळीए नीला धोळकिया ना स्वर में अविनाश व्यास की आज रचना।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल छे तो आपनी चाहिए, चलो घर अने ऑफिस में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपनाविए। रिचार्ज पेट अने शाफ्ट बनाविए, बिन उपयोगी बोरवेल ने ठीक करिए, जलाशयों में काप दूर करिए, वधु ने वधु वृक्षों वाविए। चलो आ वरसाद में कैच द रेन अभियान साथे जोड़ाइए।
2: હમણાં જ આપે આસિત દેસાઈના સ્વરમાં રચના સાંભળી, હવે સાંભળીએ નરસિંહ મહેતાની આ રચના આસિત દેસાઈના સ્વરમાં।

0: શ્રોતા મિત્રો, હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા મહિલાઓ માટેનો કાર્યક્રમ સહિયર. કાર્યક્રમનું પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ તથા ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. બરાબર 1 વાગે આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્રથી હિન્દીમાં, ત્યારબાદ 1:05 અંગ્રેજીમાં સમાચાર સાંભળીશું.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સમાચાર કે સાથ મેં વિશાલ શર્મા. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए. 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया. इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की. यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया. यात्रा के 3रे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया. वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है. नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं.
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क. हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है.
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है. इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी. मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को

0: ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने ले मिन हुन ने फूकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। शेख हमद ने क्षेत्रीय परंपरा को तोड़ते हुए 2013 में स्वेच्छा से अपने पुत्र को सत्ता सौंपने से पहले 18 वर्षों तक कतर पर शासन किया। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोवक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला ड्रबोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after concluding a 6-day successful visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In the first leg of his three-nation tour, Mr. Modi visited Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. During this visit, the Prime Minister held bilateral discussions with the Indonesian President and reviewed the progress made in the partnership. In the second leg of his tour, the Prime Minister travelled to Melbourne, Australia. Mr. Modi participated in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. During his visit, Prime Minister Modi also participated in the India-Australia CEOs Forum, where he addressed a gathering of top business leaders from both countries. On the third and last leg of his three-nation visit, the Prime Minister visited Auckland from 10th to 11th of July at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Employees Provident Fund Organisation, EPFO, has introduced the Amnesty Scheme 2026, providing a one-time opportunity for establishments operating exempted provident fund to regularise their status. Labour and Employment Ministry said that the scheme will remain open for a period of 6 months. This scheme applies to establishments that have been operating a provident fund trust recognised under the Income Tax Act 1961. The ministry said eligible establishments shall submit a formal application through email to concerned regional office. An exempted provident fund is an employer-managed PF scheme that handles its own provident fund contributions internally through a private trust rather than depositing them directly into EPFO. In Maharashtra, the death toll in the Moshi waste depot accident in Pune district has risen to 9 after the bodies of 7 more victims were recovered during the fourth day of rescue operations today. One person remains trapped under the garbage mound.

0: 17 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा फुजियान प्रांत और बीजिंग से 1-1 लाख से अधिक तथा शंघाई से करीब 34,000 लोगों को भी निकाला गया है। जापान और ताइवान में अब तक इस तूफान से किसी की मृत्यु की खबर नहीं है। हालांकि बावी के असर से दक्षिण पश्चिम मानसून के और सक्रिय होने के कारण फिलीपींस में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत हो गई। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। फ्लोरिडा मियामी स्टेडियम खाते आज क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड नॉर्वे ने 2-1 थी हरावी। आज सवेरे मिजोरी कैंसास सीटी में छेली क्वार्टर फाइनल मैच में डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड ने 3-1 थी हराव्यू। स्पेन और फ्रांस पहले थी छेल्ला चार में पोतानु स्थान बुक कर चुक्या छे। स्पेने बेल्जियम पर 2-1 थी रोमांचक विजय मेळ्यो छे, ज्यारे फ्रांसे मोरक्को पर 2-0 थी आरामदायक जीत मेळवी। टेनिस में आज पुरुषों की सींगल्स और महिला डबल्स की रमनारी फाइनल मैच में विम्बलडन बे टाइटलों निर्णय थशे। विश्व नंबर 1 जेनिक सीनर मुकाबलो पुरुषों की सींगल्स फाइनल्स में जर्मनी एलेक्जेंडर जेवरेव साथ। सीनरे नोवाक जोकोविच पर सीधा सेट में विजय मेळवीने टाइटल मुकाबला में पोतानु स्थान बुक कर्यु, ज्यारे जेवरेवे ब्रिटिश वाइल्डकार्ड आर्थर फेरीने हराविने पोतानी पहली विम्बलडन फाइनल में प्रवेश कर्यो। भारतीय समय मुजब आ मुकाबलो रात्रे 8:30 वागे शुरू थशे। वुमेन्स डबलनी फाइनल भारतीय समय मुजब सांजे 5:30 वागे शुरू थशे। चीननी गुओ हान्यू अने फ्रांसनी क्रिस्टिना माल्डेनोविकनी 10मी क्रमांकित जोड़ी मुकाबलो केनेडानी गेब्रिएला डाब्रोवस्की और ब्राजीलनी लुइसा स्टेफनी बीजी क्रमांकित जोड़ी सामे थशे। अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवस की सफल मुलाकात पूर्ण कर नवी दिल्ली परत फरिया। अहमदाबाद खाते सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आरंभ करता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में हरियाली वधारीने 20% करने लक्ष्यांक। पुणेना मोसी डम्पिंग साइट दुर्घटना में आज 7 मृतदेह मळता मृत्युआंक वधीने 9 थयो। बावी वावाजोडू पूर्व चीनना दरियाकांठाना शहर ताइजोमां त्राटक्यू। फीफा वर्ल्ड कपमां इंग्लेंडे नॉर्वेने अने अर्जेंटीनाए स्विट्झरलेंडने हराविने सेमीफाइनलमां प्रवेश कर्यो। टेनिसमां आज पुरुषोनी सींगल्स अने महिला डबल्सनी रमनारी फाइनल मैच द्वारा विम्बलडनना 2 टाइटलनो निर्णय थशे। आकाशवाणी परथी समाचार पूरा थया। हवे पछी 2:30 प्रादेशिक समाचार सांभळी शकशो।
2: आकाशवाणी अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट तथा भुज। पेश है फौजी दोस्तों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती।

नमस्ते दोस्तों, आज है हिंदी सिनेमा के। वैसे तो आप सभी लोग उनको एक विलन के तौर पे ही जानते हैं। जाने माने अभिनेता तथा विलन प्राण कृष्ण सिकंद की पुण्यतिथि। दोस्तों, प्राण के नाम से बेहतर जाना जाता था उनको। वह भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और सम्मानित अभिनेताओं में से एक थे। करीबन 6 दशक से अधिक से करियर में उन्होंने अपने समय के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। आइए दोस्तों, आज जय भारती कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाती हूँ उन्हीं

दोस्तों, वैसे तो प्राण अपने खलनायक की भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके करियर की शुरुआत यानी 1940 के दशक से उन्होंने नायक की भूमिका

भी निभाई थी। वैसे 1942 से 1951 तक नकारात्मक भूमिका और सहायक और चरित्र भूमिकाएं उन्होंने निभाई। उन्होंने 1940 के अंत से लेकर 70 के दशक तक खलनायक के रूप में वे अपने करियर के शिखर पे थे। अपने लंबे और शानदार करियर में प्राण ने करीबन 362 से अधिक फिल्मों में काम किया। आइए दोस्तों, अब मैं आपको सुनवाती हूं जिस देश में गंगा बहती है फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

ये गाना था मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम था मधुमति, बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था सलील चौधरी ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा राजकोट तथा भुज केंद्र से फौजी दोस्तों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। आज है बॉलीवुड के जाने माने नकारात्मक भूमिका निभाने वाले, जिनको आप विलन के तौर पे जानते हैं, प्राण की पुण्यतिथि। दोस्तों प्राण को अपने करियर में कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार, विशेष फिल्मफेयर पुरस्कार, 2000 के साल में स्टारडम पुरस्कार, विलेन ऑफ द मिलेनियम का पुरस्कार, इसके उपरांत 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण तथा 2013 में भारत सरकार द्वारा सिनेमा कलाकारों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों आप सुनते हैं उपकार फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में गीत। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये था जंजीर फिल्म का गीत। गीत लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में नकारात्मक चरित्र निभाने वाले सुप्रसिद्ध अभिनेता प्राण की हिट फिल्म डॉन से अब आपको सुनवाती हूँ आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, जय भारती कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में शराबी फिल्म का गीत। प्रकाश मेहरा ने गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है बापी लहरी ने।

दोस्तों, प्राण को आंसू बन गए फूल उपकार और बेईमान के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले हैं। हालांकि 1973 में जब उन्हें बेईमान में कांस्टेबल राम सिन्हा की भूमिका के लिए पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने यह कहते हुए पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का फिल्मफेयर पुरस्कार पाकिजा के लिए गुलाम मोहम्मद को देना चाहिए। खैर, आइए सुनते हैं बेईमान फिल्म से आशा भोसले और शारदा की आवाज में ये गीत। संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, ये था बेईमान फिल्म का गीत, आवाज़ें थी किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की। आज है भारतीय सिनेमा की फिल्म एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर सुलक्षणा पंडित का जन्मदिवस। 1970 और 1980 के दशक में मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में उन्होंने काम किया। वे मेवाती घराना से भारतीय क्लासिकल संगीत में तालीमबद्ध थी और भारतीय सिनेमा के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की बहन थी। आइए उन्हीं की फिल्म अपना पन से सुनते हैं, सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही आज का जय भारती कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। जय जवान। जय भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट तथा भुज केंद्र से किया गया। दोस्तों, ठीक 2:15 पे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से

0: बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की यह मिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर

0: चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
3: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और

0: डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हनियो और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
1: लुहा होई तुम्हें,
2: लुहा होई तुम्हें,
1: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
1: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
1: लुहा होई तुम्हें,
2: लुहा होई तुम्हें,
1: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
1: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
1: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
1: फूला परि फुट,
2: फूला परि फुट,
1: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
1: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
1: फूला परि फुट,
2: फूला परि फुट,
1: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
1: केऊ नाम धरी,
2: केऊ नाम धरी,
1: डाकिबि तुमकु,
2: डाकिबि तुमकु,
1: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम।
0: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
1: एक दुई, एक दुई, वो एक दुई, एक दुई, एक दुई।
0: अब हम गाना सीखेंगे।
1: केऊ नाम धरी डाकिबि तुमकु। 1 2 3 4

तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ।

0: विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवाहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू किए। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमलों के बाद किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने यमन यात्रा संबंधी 2017 की अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर कुछ शर्तें लगाने के लिए जारी की गई थी। मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यमन की अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अगर जरूरी हो तो स्थानीय सुरक्षा स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद यात्रा करने का परामर्श दिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समाज सुधारकों का महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी मन्नाथ पद्मनाभन की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मन्नम स्मृति मंडपम का भी उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री मन्नाथ पद्मनाभन आजीविक सामाजिक न्याय, समानता, शिक्षा और सामुदायिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा भी लगाया। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल संचयन को जन आंदोलन में बदलना है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश ने एक महान गायिका को खो दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज महिला डबल्स और पुरुष सिंगल्स के फाइनल खेले जाएंगे। महिला डबल्स में शाम 5:30 बजे चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलिना माल्डोनोविका की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्राबोस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है।

नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे त ममता खूबचंदानीअ खां देश ऐं विदेश जा समाचार ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। भारत ओमान जे साहिली तिजारती जहाज GFS गैलेक्सीअ ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जी कामयाब यात्रा बैदि पंहिंजे वतन मोटियो। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में

0: केतिरियुनि ई विकास योजनाऊं अवाम ॾांहुं सपोर्ट कयूं ऐं पील जो पथर रखियो। EPFO माफ़ी योजना 2026 शुरू कई आहे। आबहवा महक में ईंदड़ चार ॾींहनि ताईं मुल्क जे उत्तरी ऐं ओभरी हिसनि में ज़ोरदार बरसाति जी अॻकथी कई आहे। ऐं विम्बलडन टेनिस में अॼु शाम पुरुष सिंगल्स जे फाइनल मुक़ाबले में यानिक सिनर ऐं एलेक्जेंडर ज़्वेरेव आम्हूं साम्हूं थींदा। हाणे समाचार तफ़सीलवार ॿुधंदा। भारत अॼु ओमान जे साहिली तिजारती जहाज GFS गैलेक्सीअ ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई आहे। परॾेही मामलनि वारी वज़रात हिकु बयान में चयो त जहाज ते सवार 11 भारतीयनि मां 10 खे महफ़ूज़ तौर ते बचायो वियो आहे, जॾहिं त हिकु अञा ताईं गुम आहे। वज़रात चयो त ओमान में भारतीय सिफारतखानो सूरत हाल जी वेझड़ाईअ सां निगरानी करे रहियो आहे ऐं ॻोल्हा ऐं बचाव जे ऑपरेशन में ओमानी अख़्तियारियुनि सां राब्ते में आहे। परॾेही मामलनि वारी वज़रात खिते में तिजारती जहाजनि ते मुसलसल हमलनि ते ॻणितीअ जो इज़हार कयो। वज़रात तकरार खे तुर्त घटाइण ऐं सिफारती हल ॻोल्हण लाइ जारी ॻाल्हियुनि ते नतीजे ते पहुचण जो सॾु ॾिनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड जे 6 ॾींहनि जी कामयाब यात्रा मुकमल थियण खां पोइ पंहिंजे वतन वापसि पहुची वियो आहे। श्री मोदी जी इन अहम यात्रा जी ख़ासि हासिलातुनि ते असांजे खातूअ खां अहिवाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपये के लागत वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो विकास योजनाउनि खे अवाम ॾांहुं सपोर्ट कयो ऐं पीड़ जो पथर रखियो। इन मौक़े ते श्री शाह एक पेड़ माउ के नाम मुहिम जे तहत हिकु वॾी वण पोखण जी मुहिम जी पण शुभ शुरूआति कई। संदसि लोकसभा खिते गांधीनगर में 1,25,00,000 खां वधीक वण लॻाया विया। असांजे नामा निगार खां अहिवाल।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: हे समाचार तभी आकाशवाणी था बुद्धि राय आयो। वधिक समाचारन जी तफसील जे लाए तवा आसान जी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था। ही समाचार तवा असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते भी बुधी सगो था। दखण जी बुलबुल जे नाले सा मशहूर गायिका एस जानकी अम्मा जो कर्नाटक जे मैसूर में एक खानगी अस्पताल में चालाणो थियो। हुआ साहिबा 88 वर्यन जी हुई। एक रिपोर्टर
3: 6 दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी।

0: अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इलैया राजा, M.S. विश्वनाथन, K.V. महादेवन और A.R. रहमान सहित अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। इस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: प्रधानमंत्री मोदी चयो त एस जानकी अम्मा जे चालाणे सां संगीत ऐं सकाफ़ती जगत में न भरिजी सघंदड़ खोट आहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिणु प्लेबैक गायिका एस जानकी अम्मा जे चालाणे ते गहरे डुख जो इज़हार कयो। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर साहिबा चयो त मुल्क हिकु अजीम गायिका खे वञाए छॾियो आहे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO माफ़ी योजना 2026 शुरू कई आहे। इन तहत छूट हासिल भविष्य निधि ट्रस्ट हलाइण वारनि इदारनि खे पंहिंजी हालत नैमायती करण जो यकमुस्त वज ॾिनो पियो वञे। श्रम ऐं रोज़गार वज़रात ॿुधायो त इहा योजना 6 महीननि ताईं लागू रहंदी। इन जो लाभ उन्हनि इदारनि खे मिलंदो जेके डल क़ाइदे 1961 तरत मान्यता हासिल भविष्य निधि ट्रस्ट जो संचालन करे रहिया आहिनि। अहिड़ियुनि ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि जो इंतिजाम सिधो EPF जो बजाए वाबस्तु इदारा पंहिंजे खानगी ट्रस्ट जे ज़रिए कंदा। हिकु रिपोर्ट।
2: EPFO की यह मिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर EPFO की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अॼु चयो त मुल्क जे समाज सुधारकनि जे अजीम वरसे खे इज़त ॾियण ऐं उन खे बरकरार रखण हर नागरिक जो फर्ज आहे। श्री राधाकृष्णन नई दिल्ली जे द्वारका में मनम इंटरनेशनल सेंटर में मनम स्मृति मंडप जे महूर्ती मौके ते इहा ॻाल्हि चई। इन मौके ते उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन एक पेड़ माउ के नाम मुहिम जे तहत हिकु पौधो पिणु पोखियो। मुल्क भर में अॼु वॾे पैमाने ते वण पोखण वारी मुहिम हलाई पई वञे। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार वॾे पैमाने ते वण लॻाइण वारी मुहिम जे तहत 25 करोड़ वण लॻाइण जो मक़सदु रखियो आहे। आबहवा महकमे ईंदड़ 4 ॾींहनि जे अंदरि मुल्क जे उत्तरी ऐं ओभरी हिसनि में ज़ोरदार बरसाति जी अॻकथी आहे कई आहे। इन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, ओभरी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओलह बंगाल में गंगा वारा इलाइक़ा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ऐं ओडिशा शामिल आहिनि। रांदियुनि पासे रुख कंदे विम्बलडन टेनिस में अॼु शाम पुरुष सिंगल्स जे फाइनल मुक़ाबले में यानिक सिनर ऐं एलेक्जेंडर ज्वेरेव आम्हूं साम्हूं हूंदा। इहो मैच भारतीय वक़्त मुताबिक़ अॼु राति 8:30 बजे खां खेलियो वेंदो। मुख्य समाचार हिकु भेरो ॿीहर ॿुधंदा। भारत ओमान जे साहिली तिजारती जहाज GFS गैलेक्सीअ ते हमले जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूजीलैंड जी कामयाब यात्रा बैदि पंहिंजे वतन मोटियो। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में केतिरियुनि ई विकास योजनाऊं आवाम ॾांहुं सपोर्ट कयूं ऐं पीर जो पथर रखियो। सिंधी समाचारनि जो इहो अंक हिते समाप्त थियो। मूंखे ॾींदा इजाज़त। नमस्ते।
3: આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ।
4: સૈયર મારી માડીએ ઓડણી માટા કી।
5: શું આજનું સોશિયલ મીડિયા આપણને દરેક સ્ત્રીની વાત કહી શકે છે?
6: શું આજનો મોબાઈલ સ્ત્રીના અંતરની છબી દેખાડી શકે છે?
5: શું તમારા ચેટ બોક્સમાં સ્ત્રી હૃદયની વણ કહેવાયેલી વાતો છે?
6: શું સ્ત્રી પોતે પોતાની વાત કહી શકે છે ખરી?
5: મહોતું

वार्ताकार राम मोरे लिखित वार्ता संग्रह नु धारावाहिक पठन पठन अने प्रस्तुति वैशाली त्रिवेदी। तारीख 6 जुलाई 2026 थी दर सोमवारे बपोरे 12:30 वागे सांभळवानो चूकता नहीं। महोत्सव

0: मेमोरेंडम के रूप साइन हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक उसी प्रकार मैरिटाइम सिक्योरिटी डायलॉग यह भी आरंभ हुआ है।
1: वर्ष 2016 ना मध्यस्थी चुकादाना आधारे अमेरिका, ब्रिटन अने 12 अन्य पश्चिमी अने ईशन देशोए आजे दक्षिण चीन समुद्रना चीनना व्यापक दावाओने गैरकायदेसर जाहिर कर्या। आ 14 देशों द्वारा जाहिर करायेला संयुक्त निवेदनमां कहेवामां आव्युं छे के तेओ विवादित पाणीमां प्रादेशिक स्थिरता अने जोखममां मुक्ति अस्थिर क्रियाओने नकारे छे।

0: આપ સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ. શ્રોતા મિત્રો, થોડી જ વારમાં બરાબર 8:45 આપ સાંભળશો હિન્દીમાં સમાચાર સંધ્યા, ત્યારબાદ 9 વાગે અંગ્રેજીમાં News@9 અને 9:15 સ્પોટલાઇટ કાર્યક્રમ આકાશવાણીના દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી. અને ત્યારબાદ આપ સાંભળશો કાર્યક્રમ આજ કે ફનકાર, જેનો સમય રહેશે 9:30. પણ સૌ પ્રથમ સાંભળીએ સમાચાર.
1: નમસ્કાર, આકાશવાણી સે સમાચાર સંધ્યા કે સાથ મેં નવીન સક્સેના. भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया. अमरीका ने कहा होर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार. वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा. उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा. चीन में Under-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते. और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी. अरब समाचार विस्तार से. भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए. विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है.
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए. भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है. पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि

0: एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
3: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान

0: कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
2: गृहमंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेले जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि

हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक

भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक बिमल रॉय पर।

बिमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। ये फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

वक्त की इस बेरहमार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेदिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

बिमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।

0: अब दिन भी।
1: न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदयर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदयर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमलदा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रही। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमलदा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमलदा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमलदा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रूपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमलदा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमलदा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे।

0: सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी। और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे, जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
2: जग जग गुरु जग जगी गुरु तक तक गुरु तक तकी गुरु जग जग गुरु।

सन 1953 में ये फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया बिराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

बिमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमल दा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

0: बिमल दा ने 1960 में बनाई फिल्म परख, जो लीक से हटकर फिल्म थी और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया।
1: ओ, सजनों

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

0: रविंद्रनाथ टैगोर की कृति पर बिमल दा ने बनाई एक और मर्मस्पर्शी फिल्म काबुलीवाला।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

विमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक, इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन विमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदेर पौथे और हमराही।

हमराही उदय पौथिर का ही हिंदी संस्करण थी। विमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। विमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन ये फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को विमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान

चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। विमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहेगा।

0: अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मडूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सकी मना लागिना, द्रुत एकताल बिनती करता।
1: You just heard राग छायानट। श्री कुमार मडूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना, द्रुत एकताल बिनती करता।

0: होने पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: दैट वॉज राग बागेश्री। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा इन विच यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फुसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है।

इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के ऑर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेक्टर आज -35 डिग्री शून्य से नीचे पारा है सर। सर हम 10 घंटे से डटकर मुकाबला करते हैं सर। 3 जवानों का कुछ पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन 14 घंटे से रुका हुआ है। जी सर। यस सर 2 जवान शहीद हुए हैं। अभी तक कॉफी आया नहीं है सर। शाम तक आ सकता है सर। गोला बारूद की वेट कर रहे हैं। अभी तक पहुंचा नहीं। हेलीकॉप्टर से शाम तक आ जाए तो। जी जी कन्फर्म करके बताता हूं सर। ओवर सर।
1: कोई है नायक गिरी?
2: यस सर रिपोर्टिंग।
0: लास्ट नायक कितना स्टॉक है?
2: कल शाम तक चल सकता है। सप्लाई 1 हफ्ते से नहीं आई। बूट की सप्लाई भी नहीं आई। पोजीशन क्रिटिकल। फटे जूते से जवान खराब वेदर में फ्रंट पोजीशन पर दौड़ते हैं सर। तीसरा रिमाइंडर परसों भेजा है। ओवर।
0: कल रात वायरलेस पर कौन बैठा था? सुनो 65 फील्ड रेजिमेंट के 7 जवान एवलांच बर्फ के तूफान के चलते लापता है। उनकी कोई खबर?
2: नो सर। सर्च ऑपरेशन चालू है। 2-3 दिन और लग सकता है जी। बहुत बर्फबारी हुई है। अरे हाँ हेडक्वार्टर को रिमाइंडर भेजना है सर। राशन की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए तो।
0: हाँ ठीक है ठीक है। और तुम जाओ चौकी नंबर 11 को संभालो और हवालदार को यहां बुलाओ।
2: यस सर।
3: रिपोर्टिंग सर। 8 घंटे बीत चुके हैं। सरहद के पास गोलीबारी बंद है। बर्फ के तूफान से काफी नुकसान हो रहा है। रम की डिलीवरी को रिमाइंड भी करवाना है सर।
0: अरे शिंदे पीने वाले क्या निशाना लगाएंगे। छोड़िए सब। अरे हाँ हाँ हाँ तेरी तो छुट्टी मंजूर हुई है ना। कब जा रहा है?
3: कल शाम को 4 बजे। कैंप से सुबह 7 बजे पैदल निकलूंगा तो समय से पहुंच जाऊंगा। और सर आपकी सब पार्टी में वेट कर रहे हैं प्लीज।
0: अरे मैं तो शराब पीता ही नहीं। तुम्हें मालूम तो है मैं गुजरात से हूं। सुनो एक बार मैं जर्मनी ट्रेनिंग में गया था। शाम को स्टेज पर से सबकी पहचान देने के वक्त किसी ने मेरी पहचान देते हुए कहा कि देखो जी ये महाशय उस देश में से आते हैं जहां क्या खाना और क्या पीना वे खुद तय नहीं करते हैं। उनकी सरकार तय करती है और वो भी कानून बनाकर। मेरी तो हालत खराब हो गई। सबको ताजुब हुआ कि ये कैसी सरकार है जो नागरिक को खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं देकर सब वो तय करती है।
3: क्या बात करते हो साहब। साहब यहां तो जरूरत से पीते हैं हम। और आज का टेम्परेचर आपने सुना -32 है। सर्दी से निमोनिया होने में देर नहीं लगती। और ये सब लग्जरी चीजें आप अपने गुजरात में ही छोड़ दीजिए। यहां तो जरूरत से पीना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा तुम शुरू करो। मैं एक वायरलेस मैसेज भेजने के बाद शामिल हो जाता हूं। अरे हाँ सुनो सुनो आज मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल रहूंगा। लेकिन हाँ मेरे लिए वो छोटा सा बनाना वो तुम्हारे जैसा पतियाला नहीं। देखो देखो हमें आदत नहीं है। ये इतनी ठंड है आप लोग ये बोल रहे हो तो पहली बार। सच कहूं तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
2: सर क्या बात है तब तो खुशी की बाढ़ आएगी। अरे सुनो कैप्टन साहब आज पार्टी में शामिल होंगे।

0: रहे हैं।
1: हम उनसे क्या कहेंगे पता है?
0: क्या कहेंगे?
2: हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा।
1: अरे क्या कहेंगे,
0: क्या कहेंगे? अरे लाए हैं बड़ी मुश्किल से संभाल के लाए हैं,
1: सुंदरियों को छोड़कर हम पहुँचे हैं, पहुँचे हैं।
0: अरे लेके आए हैं, लेके आए हैं, बचा के लेके आए हैं।
1: हाय तौबा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लाए हो?
0: तो सुनो सुनो मेरी जाने जा, अरे सुनो सुनो मेरी जाने जा,
2: पूछती हो क्या लाए हो, पूछती हो क्या लाए हो,
0: तो सुनो। हम दिल अपना बचा के,

0: दिनों की छुट्टी है और अरे भाई सुनो सुनो सुनो
1: हाँ हाँ सुनाइए फरमाइए
0: मेरा किस्सा सुनो।
1: हाँ
0: तब हम बारामुल्ला की पठान चौकी पे थे, सरहद पर तनाव था, लश्कर की मूवमेंट काफी थी, कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता था। हम सभी बेचैनी से लड़ने को तैयार थे,
1: बराबर तैयार थे, लेकिन तब एक शामत आई। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। छुट्टी पे गए हुए सबको वापस फौज के मोर्चे पर हाजिर होने का कमांडर साहब ने फरमान जारी किया। मैंने मिला हुआ तार पढ़ा और क्या लिखा था पता है? लिखा था कि बहन की शादी 6 अक्टूबर को तय हुई है, जल्दी घर पे आ जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरी मां ने कसम भेजी है, जल्दी घर आ जाओ। बोलो, मेरी तो मति मार गई। साहब के पास जाके मैंने हाथ जोड़ा, साहब मेरी बहन की शादी तय हुई है, 6 अक्टूबर को शादी है, ना मत कहना, प्लीज ना मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूं।
0: साहब लोग बड़े चतुर होते, कभी ना नहीं कहते, लेकिन ना का बाप बोलते हैं। वो हंसते हंसते बोले, अरे सुनो, एक काम करो, मैं जो काम बताऊं वो करके आ जाओ तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। बोलो, करोगे?
1: हाँ सर, करूंगा, आप जल्दी बताइए, मैं जरूर काम करूंगा।
0: तुम्हें मालूम है सरहद पर तनाव है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी है और सबको ड्यूटी पर वापस बुलाया है। ये सब के बावजूद मैं जोखिम उठाता हूं, एक काम करके तुम आओ तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर।
1: हाँ सर, आप जल्दी काम बताइए, मैं करूंगा।
0: शाम होने से पहले दुश्मन की सरहद में घुस के उनकी एक पैटन टैंक लेकर आओ, बस इतना करो।
1: और सुनो यारो, शाम होते होते दुश्मन की एक टैंक मैंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने लाके खड़ी कर दी। अरे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई साहब की तो, और साहब चकरा गए, बड़ी मुश्किल से बोल पाए। बोलो,

0: बहादुर, ये कारनामा किया कैसे? जल्दी बताओ।
1: मैंने कहा साहब, इसी तरह हम अपनी भारतीय टैंक दुश्मन के जवानों को भी दे देते हैं, और ये पुराना रिश्ता है। और साहब, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन शाम को सरहद पर महफिल और मुशायरा भी होता है। अरे, कभी कभी तो हम मिठाइयां भी बांट के खाते हैं। सरहद पर सभी त्योहार भी साथ में मनाते हैं, लेकिन जब युद्ध होता है,
0: युद्ध के दौरान सब बंद हो जाता है और हम दुश्मन फिर से दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन का पाठ अदा करते हैं और मरते हैं, सदियों से मरते हैं। दुनिया का यही रिवाज है। कब दोस्त बनना है और कब दुश्मन बनना है, वो हम लोग तय नहीं करते, वो हमारे ऊपर वाले नेता लोग तय करते हैं।

0: सूबेदार मेजर चक्रवर्ती, कोई हताहत जान हानि का पूरा रिपोर्ट दें।
1: सर, एक शहीद और दो क्रिटिकल इंजर्ड हेलीकॉप्टर लेके अभी अभी आर्मी हॉस्पिटल में गए। दो जवानों को माइनर इंजरी, पांव में गोली लगी है, लेकिन सीरियस नहीं है।
0: बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए, यहां भी और वहां भी। चक्रवर्ती, ये बता, हम लोग क्यों लड़ते हैं? हम क्यों नफरत करते हैं उनसे जिसने मेरा या तुम्हारा कोई निजी नुकसान कभी भी नहीं किया है, जिसकी मैंने या तुमने सूरत तक नहीं देखी? फिर भी हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मरते हैं?
1: साहब, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं लड़ते हैं। लड़ाने वाला तो बड़ी ऑफिस में, राजधानी के एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं। कमांडो, सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच है इनके पास। लड़ाते वो है, मालिक तय करता है कुत्ता किसे काटे। वो तो हुक्म देने वालों की चौकी करता है। अरे छोड़ो साहब, अब तो 2 साल बचे हैं रिटायर होने में। यह अजीब सिस्टम है, परंपरा है, कोई नहीं बदल सकता। सदियों से चली आ रही है, दुनिया भर में लश्कर का हाल यही है। समझ तो बहुत रहे हैं साहब, दुनिया भर में सिस्टम है, सोच व्यवस्था कोई नहीं बदल सकता। मेरा दुश्मन मैं तय नहीं करता हूं। राजधानी में सुरक्षित बैठे सर्वसत्ताधीश करते हैं। मैं वो इंसान को दुश्मन बनाता हूं जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो भी किसी का बेटा, शौहर, पति, इंसान है। एक सायरन बजने से, युद्ध घोषणा से हम एक दूसरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने बहन की राखी उस हाथ में देखी थी जिसको मैंने एक दिन कॉफिन में रोते रोते तिरंगा लपेटे रखी थी।
0: यहां परंपरा बन चुकी है, शहीदों की परंपरा का नाम दिया है उसे। जो हमें लड़ाते हैं उन नेताओं के बेटों को कभी कॉफिन में किसी ने देखा? आज तक तो नहीं देखा।

0: हेलो, कौन बोले जा?
1: सुनो, हम दिल्ली से आए हैं। कैंप मिलिट्री गैरिसन इंजीनियर की ऑफिस से बोल रहे हैं। सुनो,
0: जी जी जी बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
1: हम 5 बजे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पूरा 21 घंटे से। आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर हमें विनोद भाई सोनी से अभी मिला है। नहीं, वो हमारे पास नहीं है। देखो, आप सोसाइटी के बाहर निकलकर कोई मेन सड़क पर आ जाओ, आपसे मिलना जरूरी है। क्या कहा? पालड़ी अंजलि सिनेमा? हम यहां एलिस ब्रिज वीएस हॉस्पिटल से
0: सीधा रास्ता पकड़ो और इसी सड़क पर अंजलि चौराहे पर मैं खड़ा हूँ। हाँ हाँ, निकलता हूँ जी। हाँ, घर पे सब सो रहे हैं। हाँ जी, अभी किसी को नहीं बताऊंगा।
2: कौन? अरे जगदीश, अड़ती रात रे। अरे पर अत्यारे कौन मळवा आवे? अरे अत्यारे मने उठाड़वानी सी जरूरत थी। जेने मळवो होय तो ऑफिसे आवे।
0: बापूजी, तेमनी वात तो सांभळो। अमदावाद मां पहली वार आ लोको आव्या छे। क्यारना कलाकोथी आपणुं ज घर शोधता हता। आपणा विनोदभाई सोनी पासेथी टेलिफोन सरनामुं लईने।
2: हा सारू, बोलाओ।
1: नमस्कार बापूजी, आपको एक समाचार देना है।
2: क्या फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत शुरू की?
1: बाबूजी, हम कैप्टन नीलेश को लाए हैं।
2: हैं? क्या मतलब? नीलेश को लाए हैं? क्या छे क्या छे? अरे कहाँ है नीलेश? सुना नहीं, कहाँ है वो?
0: जी, कॉफिन में लाए हैं।
2: क्या कहा?
1: जी, पूरे मान सम्मान से, तिरंगे में, शहीदोचित आदर से।
2: एक मिनट सांभो, सुनो, रोना धोना बंद करो। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है, देश के लिए प्राण समर्पण किया है। नसीब वाला है, 24 साल का मेरा बेटा कैप्टन नीलेश ने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, हमारे पुरखों की 100 पीढ़ियों का नाम रोशन किया है, हमारे खानदान का इतिहास आज सुवर्णमय हुआ है। भारत माँ का लाल सियाचिन मोर्चे से आया है। सुनो, हम सब घर, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और भारत देश आज गौरवान्वित हुआ है। याद रहे, सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा कैप्टन नीलेश कुमार आज से देश का हुआ है, शहीद हुआ है, उसको विरोचित विदाई दें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ है, मुझे अभिमान है। ऐसे बेटे घर घर में हो, आज शहीदोत्सव मनाएं। आज भारत माता का बेटा शहीद हुआ है।

प्राण विधान ने प्रीतम धारी देखाड़ो दसमो द्वार ए कुटिए कर समझी ने बिनु मारी सुरता माले जो

सतगुरु श्याम मड़िया ने जुगते जादा वीर ने ए मन पत्थर हता ते पानी कजान कजा छ निरभिणा नीर पाई लग पड़ी भमने ने चल पानो दास ए रामदास वचने मुड़दास मोइला मारा गुरु ने बतायो